0: The songs that raised us. The stories that stayed with us. Your weekend back begins now. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: डांसिंग के खजाने काट रहे जरा जोर से बोले बे।
2: गेट रेडी फॉर अ ट्रेजर हंट लाइक नो अदर। इंदिरा कुमार, भूषण कुमार एंड अशोक ठाकेरिया इनवाइट यू टू द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर ऑफ द ईयर, धमाल 4, स्टारिंग अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी एंड जावेद जाफरी। डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार, रिलीजिंग ऑन 10th जुलाई। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अल निसर सिनेमा फिल्म। पावर्ड बाय बिग 106.2।
0: Non-stop music from the biggest movies. The Big Weekender.
3: All about the hits.
0: Big 106.2. The beat of Bollywood.

वही पुरानी नई कहानी, बचपन से जवानी। देखे थे पहले जवानी में सपने, देखोगी सपनों में अब तुम जवानी।

0: बोलो।
1: ये रास्ता जरा सा नया है तमन्ना, जरा देख लेना कि रुकना कहाँ है और चलना कहाँ है, कहाँ लड़खड़ाना समझना कहाँ है।

0: खोने और पाने के बीच पल भर का फासला है। इनकार मत करो, आगे बढ़ो, थाम लो उसका हाथ, वरना तुम्हारा इनकार मेरा इंतजार बन जाएगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ प्यार के इस मोड़ के आगे क्या है। आगे बढ़ो।
1: Big 106.2

0: झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टरका।
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: मेरी भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए।
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती। तुम
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: आपने बहुत अच्छा शॉट दिया।
1: थैंक यू। मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब जैसा है।
0: ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, पर ये

candy ser Vic Capita. Te Capita. इश्क सोच के गीता की गीता दिल दे के दिल लैण दी लालच करी बुला जे तूने प्यार भी लालच नाल कीता